0: देश का टायर जेके टायर।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: बाय नाउ सेल इमीडिएटली। होल्ड इट बॉस।
3: बाय नाउ सेल। होल्ड होल्ड। बाय सेल
1: इमीडिएटली। कंफ्यूज्ड? व्हाट टू बाय, व्हाट टू सेल, व्हाट टू होल्ड? Ask Profit with Mahima and Puneet, Monday to Friday, 10:30 AM, only on NDTV Profit.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार। उसके दूसरे दिन दोनों ने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। जो हॉस्पिटल की लापरवाही है।
7: NDTV traced each and every affected family and also visited multiple hospital wards.
8: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
9: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
10: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced action.
1: चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वो मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
11: The news, Ayush. Since when do we do?

0: in, first water is converted to hydrogen. So hydrogen is produced from water by electrolysis. So it's a green hydrogen. Then that hydrogen is stored in tank, in cylinders. Then those cylinders are basically used in the train, and there is a fuel cell. That fuel cell converts the hydrogen back into electricity. That electricity drives the motors of this train. So that's the way it works. And the emission is just water drops. There is no emission.
1: Lastly, India will be joining those few countries which will have the hydrogen power train. The ecosystem is a big question. Of course, Jind will have its own ecosystem to fill the hydrogen in their cylinders. But in the northern eastern country, parts of the country or somewhere, you know, where the electronic, you know, trains cannot reach, how this train is going to be again?
0: Whenever new technologies come, always there will be a learning curve for the country as well as for the industry. What's important is to develop the technology. We have been able to develop the technology by this process.
1: Your message to the people of Punjab, Haryana, who will be getting its first service? Okay.
0: It's a historical day for Jind and for Haryana and Punjab also, because having this kind of technology starting from Jind means Jind is now on the world map.
2: और ये हरियाणा के लिए भी सौभाग्य की बात है और देश के लिए भी सौभाग्य की बात है कि भारत दुनिया का पांचवा देश बनेगा जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी लंबी ट्रेन चलेगी और स्वदेशी भारत में निर्मित ट्रेन चलेगी। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा के हमारे मंत्री सबकी हाजिरी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बहुत बड़ी सौगात ये हाइड्रोजन ट्रेन की देंगे। और
3: जी, ये बहुत बड़ी सौगात हरियाणा और भारत को मिलने जा रही है। पहली भारत की हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो हरियाणा से और जींद से शुरू होगी। ये बहुत बड़ी सौगात है। इसके अलावा भी मोदी जी बहुत सारे शुरुआत कर रहे हैं उस एक ही दिन में। उसमें सबसे पहले तो यही ट्रेन बनाने जा रहे हैं जिसमें 89 किलोमीटर चलेगी और इसमें 682 सीट्स होंगी जिसमें 2600 लोग, एक पैसेंजर एक बार में जा सकेंगे। पोल्यूशन दूर होगा, हम एनर्जी को बचा सकेंगे, डीजल पेट्रोल जो जिससे हमें डॉलर खर्चने पड़ते हैं जिसके कारण रुपये नीचे जाता है वो बचेंगे।
4: और विश्व में सबसे मजबूत, सबसे ज्यादा ब्रॉड मीटर गॉज पे हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो रही है, तो वो भी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा खुशी का विषय है।
5: देखिए, हम हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में पढ़ा करते थे और जर्मनी से शुरू हुई, फिर चाइना इसमें आगे निकल गया, फिर यूएस हो गया, इनके आपस में कंपटीशन चलते थे कि हाइड्रोजन ट्रेन किस में ज़्यादा चलेंगी। लेकिन जब ये पता चला कि हिंदुस्तान के अंदर भी हाइड्रोजन ट्रेन आ रही है तो ये प्रसन्नता हुई कि इतने विकसित राष्ट्रों की जहाँ चर्चा होती थी वहाँ आज भारत की भी चर्चा होगी।
6: ऐश्वर्या जैन इज ट्रैकिंग द लेटेस्ट एक्शन फॉर अस। ही जॉइंस अस लाइव फ्रॉम हरियाणा'स जींद दिस मॉर्निंग। Aishwarya, this 89 kilometer Jind Sonipat hydrogen power train, it's been designed, engineered and integrated in India using indigenous technology, right?
1: Well, that's right. In fact, only handful of countries have. Germany, China, Japan, United States have experience of hydrogen train, and India is going to be the fifth country who will be experiencing the hydrogen power train. And Prime Minister will be flagging off at 11 a.m. here at Jind Junction. We are reporting from, just behind me is this zero emission hydrogen power train which has been named Namo Green. Prime Minister Narendra Modi along with Union Railway Minister Ashwini Vaishnav will be flagging off India's first hydrogen power train. What makes this train very special is that it does not run on diesel and it does not depend on overhead electric wires. Instead, it generates its own electricity using hydrogen fuel cells. And very importantly, the only byproduct this process is water vapor, making it near zero emissions mode of transport as well. This train will run from Jind to Sonipat, and it is 2,600 passengers capacity, which will run from Sonipat to Jind. Now, what we've been told is.

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
4: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, everyday. मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
5: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
6: दिस काइंड ऑफ अवार्ड्स एंड यू नो ज्यूरी लाइनअप, यू आर ट्रूली गिविंग इट द राइट वेटेज।
7: द एमिनेंट ज्यूरीज हु आर हियर एंड दैट इटसेल्फ स्पीक्स फॉर the commitment towards highlighting the advantage which India is having. What I am looking for in this is that we should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth but also on bringing good governance.
6: Be part of a jury and vote on the people, the men, the women, the companies in India who have the right stuff is a great opportunity for us.
5: Who will learn India's top business owners? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
8: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार था। उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
9: NDTV traced each and every affected family and also visited multiple hospital wards.
10: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
11: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
12: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced

0: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
1: देश का टायर जेके टायर।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आरती और मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, everyday. Meetha ya namkeen, chahe jaise khao. 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
7: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
8: दीज काइंड ऑफ अवार्ड्स एंड यू नो ज्यूरी लाइनअप, यू आर ट्रूली गिविंग इट द राइट वेटेज।
9: द एमिनेंट ज्यूरीज हु आर हियर एंड that itself speaks for the commitment towards highlighting the advantage which India is having. What I am looking for in this is that we should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth but also on bringing good governance.
10: Be part of jury and vote on the people, the men, the women, the companies in India who have the right stuff is a great opportunity for us.
7: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
11: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार था। उसके दूसरे दिन तो उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
12: NDTV traced each and every affected family and also visited multiple hospital wards.
13: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
14: Checked all the medications, the drugs, everything. We've called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
15: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced

0: that if a boy from Ahmedabad with no capital and no connections could build, then there must be 1,000 more Gautam Adanis sitting undiscovered.
1: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार.

सुविधा को मिले हैं। इसमें रेलवे के, हाईवे के अनेक प्रोजेक्ट्स हैं, हमारी विरासत से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं और दो नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहां के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए भी हरियाणा के मेरे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज जींद और हरियाणा के लोगों की मैं एक और बात के लिए सराहना करूंगा। स्वच्छता से स्वागत पहल को आपने जिस गंभीरता से लिया है, जिस तरह मेरे आने से पहले यहां के लोग स्वच्छता अभियान में नए सिरे से, नई ऊर्जा से जुटे हैं, वो दिल खुश कर देने वाला है। और मैं देख रहा था पिछले एक सप्ताह से सोशल मीडिया में आपका ये जो सफाई अभियान चल रहा है उसकी भारी चर्चा रही है। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा है सोशल मीडिया में, मोदी जी आप बार बार आइए ताकि हमारा जींद स्वच्छ रहे। जिस महाशय ने ये भाव व्यक्त किया है मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं जींद वालों से आज कुछ मांगने आया हूं। आप मुझे बताइए, क्या इस सिफाई के लिए, ये स्वच्छता के लिए मोदी का आना जरूरी है क्या? अगर जींद के लोग तय कर ले, हरियाणा के लोग तय कर ले कि अब हम गंदगी नहीं करेंगे, तो जींद कभी गंदा होगा क्या? हरियाणा में गंदगी आएगी क्या? तो काम एक ही करना है, मोदी के आने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप तय कर लीजिए, स्वच्छता ये हमारा स्वभाव बना देंगे, स्वच्छता ये हमारे संस्कार बना देंगे। हम स्वच्छता को इसी तरह अपनी हर दिन की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, अगर हम रेलवे के इतिहास पर नजर डालें तो पाते हैं कि 19वीं सदी के रेलवे की पहचान स्टीम इंजन से बने थे, 20वीं सदी की पहचान डीजल और बिजली से चलने वाली रेल बनी, और अब 21वीं सदी की रेल हाइड्रोजन से चलने वाली है। आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार होने की बहुत संभावनाएं हैं। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे,
लागत कम कैसे हो उसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे। दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन अभी अभी आई है, करीब 7-8 साल पहले ही अस्तित्व में आई है। अभी दुनिया के 3 या 4 देश ही हैं जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का सामर्थ्य है, और जिन देशों में अभी ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन भी चल भी रही है वहां बहुत शुरुआती दौर में है। लेकिन भारत की जो ये हाइड्रोजन ट्रेन है उसके सामर्थ्य के बारे में सुनकर आपको भी गर्व होगा, एक एक हिंदुस्तानी को गर्व होगा। साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर, और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो 3 या 4 कोच वाली है, और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है। साथियों, मैं आपको गर्व की एक और बात बताना चाहता हूं। भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन धुआं रहित तो है ही, ये मेक इन इंडिया का भी एक बहुत सफल उदाहरण है। इस हाइड्रोजन ट्रेन को भारत के ही इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है, भारत की ही कंपनी ने इसको बनाया है। साथियों, यह हाइड्रोजन ट्रेन बाकी ट्रेनों से बिल्कुल अलग है, इसके लिए पूरा सिस्टम अलग चाहिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अलग चाहिए। यहां जिंद में भी इसके लिए तमाम सारी व्यवस्थाएं बनाई गई है, और साथियों, आने वाले समय में यहां हाइड्रोजन ट्रेन से जुड़ा और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, नई नई फैक्ट्रियां लगेगी जो हाइड्रोजन ट्रेन नेटवर्क की जरूरतों को पूरा करेगी। यानी ट्रेन से हरियाणा के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बनने तय है। साथियों, पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेल में जो ये बड़े बदलाव हुए इससे भारत को एक और फायदा हुआ है। आप देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से पश्चिम एशिया में हॉर्मुज के पूरे क्षेत्र में, ईरान और गल्फ में युद्ध चल रहा है, और जिस समुद्री रास्ते से हॉर्मुज से भारत बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, हमारे किसानों के लिए खाद, उसी रास्ते से आता है, उसी समुद्री मार्ग से आता है। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से

ये रास्ता निरंतर युद्ध का मैदान बन चुका है, संकटों से घिरा हुआ है। साथियों, अगर 2014 से पहले अगर ये स्थिति आती तो आज हिंदुस्तान का रेलवे का काम पूरा का पूरा ठप पड़ा गया होता, क्योंकि उस समय 2014 में देश का बहुत बड़ा हिस्सा था, ऐसा था जहां हमारी ट्रेनें सिर्फ और सिर्फ डीजल से चलती थी। अब आप सोचिए, अगर डीजल आना बंद हो गया होता और डीजल से चलने वाली ट्रेनें कैसे चलती, देश कितने बड़े संकट में आ जाता। लेकिन साथियों, 2014 की स्थिति नहीं है, ये मोदी है। बहुत पहले सोचता भी है और समस्या के समाधान के रास्ते भी जमीन पे उतारता है। आप सोचिए, भारतीय रेल के बिजलीकरण की शुरुआत, ये सुनकर के भी ये चौंक जाएंगे आप लोग, बिजलीकरण की शुरुआत 1925 में हुई थी, यानी करीब 100 साल पहले। 1925 से लेकर 2014 तक, यानी करीब 90 साल में पूरे देश का जो रेल नेटवर्क था उसका सिर्फ 30% एक तिहाई से भी कम रेल नेटवर्क का बिजलीकरण हो पाया था। 70% क्षेत्र डीजल से चलता था और जिस गति से 90 साल में 30% काम हुआ तो 100% होते होते 300 साल लग जाते, 200 और लगते। भारतीय बिजलीकरण रेलवे का शायद नहीं हो पाता, डीजल से ही रेल चलती। लेकिन बीते 12 वर्षों में भारत के करीब 99% रेल नेटवर्क का बिजलीकरण हो चुका है। हरियाणा में रेल नेटवर्क का 100% बिजलीकरण हो गया है। इस वजह से लड़ाई होने के बावजूद भी, तेल का संकट पैदा होने के बावजूद भी, भारत की रेल रुकी नहीं है, भारत की विकास की गाड़ी अटकी नहीं है, ट्रेनें निरंतर चलती रही। साथियों, रेल हो, रोड हो, कनेक्टिविटी का ऐसा काम सुविधा भी देता है और विकास की गति भी कई गुना बढ़ा देता है। आज जींद जो इतने सारे हाईवे से जुड़ रहा है, अभी इस मंच से भी 3 बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के हरियाणा वाले हिस्से का लोकार्पण हुआ है, जींद गोहाना नेशनल हाईवे भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसके अलावा अंबाला काला आम 4 लेन से भी हरियाणा और हिमाचल दोनों राज्यों के लोगों को बहुत सुविधा होगी। साथियों, अब जींद

0: देश का ऐसा जिला बन गया है जो पांच पांच नेशनल हाईवे से कनेक्टेड है। ऐसी कनेक्टिविटी से यहां के किसानों और पशुपालकों की उपज को बड़ी मंडियों तक पहुंचाना आसान और सस्ता होगा। इससे उद्योगों को बल मिलेगा, पर्यटन को पंख लगेंगे और इससे बड़ी संख्या में नए रोजगार भी बनेंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं, अभी मैं कुछ दिन पहले ही इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा से लौटा हूं। वहां भारत ने अनेक तरह के समझौते किए जिनकी बहुत चर्चा हुई है, लेकिन एक विषय ऐसा है जिस पर उतनी बात नहीं हुई। ये विषय मेरे देश के और विशेषकर हरियाणा के युवाओं से जुड़ा हुआ है और वह विषय है खेलकूद, स्पोर्ट्स। साथियों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में वहां की सरकारों से स्पोर्ट्स को लेकर मेरी व्यापक चर्चा हुई है। इन दोनों देशों के साथ मिलकर आने वाले समय में हम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, ऐसे अनेक मामलों में बहुत सारा काम साथ मिलकर करने वाले हैं। इससे हरियाणा के युवाओं को भी बहुत लाभ होगा। साथियों, आज भारत में स्पोर्ट्स को फिटनेस और रोजगार का बड़ा माध्यम बनाया जा रहा है। हमारी सरकार ने नई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी खेलो भारत नीति भी बनाई है। खेलो इंडिया अभियान से लेकर टॉप स्कीम तक आज खिलाड़ियों को अभूतपूर्व सुविधाएं मिल रही हैं, उन्हें हजारों रुपयों की आर्थिक मदद दी जा रही है। यहां हरियाणा में भी भाजपा सरकार खेल और खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन दे रही है। साथियों, आज एक कार्यक्रम भले हाइड्रोजन ट्रेन का है, दूसरी विकास परियोजनाओं का है, लेकिन मैं आज यहां के नौजवानों से एक और बात भी कहने आया हूं। आप सभी जानते हैं, साल 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाला है, 2036 में ओलंपिक गेम्स भारत में हो, इसके लिए भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हर खिलाड़ी को जोरदार तैयारी करनी है, पूरा दमखम लगाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि डबल इंजन की बीजेपी सरकार आपको हर सुविधा देगी। और जो 36 के ओलंपिक को देखना चाहते हैं, आज जो 5 से 12 15 की उम्र के बच्चे हैं ना, हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और एक बात और भी बता दूं, आने वाले समय में अहमदाबाद में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स जो होने वाली है, मैं हरियाणा के साथियों से कहूंगा कि आप इसके लिए भी खूब तैयारी कीजिए। मुझे पक्का विश्वास है हरियाणा के बेटे बेटियां हमेशा की तरह इनमें भी अपना परचम लहराएंगे। साथियों, हरियाणा की डबल इंजन सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही है। नायब सिंह जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार यहां के नौजवान हो, किसान हो, बहनें बेटियां हो, सबके लिए बेहतरीन काम कर रही है। बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने का जो रास्ता हरियाणा सरकार ने दिखाया है, वो इतना आसान नहीं था, लेकिन ये भाजपा सरकार ने करके दिखाया है। साथियों, यहां के किसानों का हित भी हमारी प्राथमिकता में है। जींद की मंडी तो हरियाणा की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है। डबल इंजन की भाजपा सरकार के कारण हरियाणा के किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि से हरियाणा के किसानों को करीब 8,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इसमें जिंद के हमारे किसानों को भी 600 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं। साथियों, हमारा देश संस्कार और संस्कृति का देश है और ये क्षेत्र तो इस समृद्ध विरासत का बहुत बड़ा केंद्र है। ये जिंद की धरती है जहां महाराजा रणजीत सिंह का गौरव भी है और पांडवों की आस्था भी है। पांडु पिंडारा और रामराय जैसे पवित्र तीर्थ आज भी लाखों श्रद्धालुओं को आस्था के केंद्र है। साथियों, आस्था और अध्यात्म की यही विरासत है जिसे आज का भारत सहजता भी है और अब अगली पीढ़ी तक पूरे मान के साथ पहुंचाता भी है। इसी भाव के साथ आज कुरुक्षेत्र में एक सिख म्यूजियम की आधारशिला रखी गई है। हरियाणा का ये नया संग्रहालय भारत की महान गुरु परंपरा को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाएगा। साथियों, हरियाणा अब तेज विकास के पथ पर दौड़ रहा है। खेती हो या फिर उद्योग, ये दो ऐसे पहिए हैं जो हरियाणा को सशक्त कर रहे हैं। आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है उनसे हरियाणा के विकास को और गति मिलेगी और हरियाणा का ये तेज विकास विकसित भारत के सफर को और ऊर्जावान करेगा। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Prime Minister Narendra Modi there addressing a public gathering at the Eklavya Stadium in Jind. He will now be travelling to Chandigarh, where he will then lay the foundation stone and inaugurate various development projects worth over 6,600 crore rupees. He will also be addressing another gathering on the occasion. Slip into a short break. News and updates will continue on the other side. Stay tuned to Breaking Ground.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: That if a boy from Ahmedabad with no capital and no connections could build, then there must be 1,000 more Gautam Adanis sitting undiscovered.
11: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार। तो इनोवेटर्स, रजिस्ट्रेशन करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक। An initiative by Gautam Adani.
12: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
13: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया, विटनेस्ड हिस्ट्री बीइंग मेड इन ग्लोबल कैपिटल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स।
14: This location from Tel Aviv
13: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
15: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
16: The Ayatollah Khamenei is gone.
17: There has been a missile attack right behind you,
18: and we need to rush into a shelter.
19: Heading there.
20: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
13: And now, Aditya Raj Gaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
12: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
21: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में,
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: That if a boy from Ahmedabad with no capital and no connections could build, then there must be a thousand more Gautam Adanis sitting undiscovered.
10: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार। प्रो इनोवेटर्स, रजिस्ट्रेशन करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक। An initiative by Gautam Adani.
11: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
12: ही हैज ट्रैक द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया, विटनेस्ड हिस्ट्री बीइंग मेड इन ग्लोबल कैपिटल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स।
13: This location from Tel Aviv
12: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
14: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
15: The Ayatollah Khamenei is gone.
16: There has been a missile attack right behind me
17: and we need to rush into a shelter.
18: Heading there.
19: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
12: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
11: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
20: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
4: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
12: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
21: These kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
22: The eminent juries who are here and that itself speaks for the commitment towards highlighting the advantage which India is having. What I am looking for in this is that we should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth but also on bringing good governance.
21: Be part of jury and vote on the people, the men, the women, the companies in India who have the right stuff is a great opportunity for us.
12: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
23: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार। उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
24: NDTV traced each and every affected family and also visited multiple hospital wards.
25: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
26: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
27: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced action.
28: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
29: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal. What's happening? How?
28: The show that sets the prime time agenda.
29: We'll be deep diving into this topic to tell you what's happening.
28: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
30: The news.
31: Ayush, since when do we do scripts?
30: Fair point.
31: Picture this. The biggest stage. Floodlights.
30: Wow.
31: 4K. The works.
30: Where's the hook?
31: There's going to be celebrities and guaranteed eyeballs.
30: Where's the hook?
31: Think about this.
0: front page advertisements and hoardings.
1: Bro, where's the hook?
0: Cross-platform, digital first, virality.
1: Without a hook, no way. The message is clear. It's 2026. You gotta be real in a world of reels. You gotta be original in a world where everything seems generated.
0: That's it. That's what we're looking for.
1: The best campaigns.
0: The hottest trends.
1: The smartest brand moves on our new show.
0: But wait, what do we call it?
1: The hook.
2: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment.
3: इस मिशन में खर्च हुए हैं आज भी यहां हेल्थ एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े विकास के कई काम शुरू हो रहे हैं मैं इनके लिए सभी चंडीगढ़ वासियों को बधाई देता हूं साथियों यहां आने से पहले मैं हरियाणा के जींद में था और यहां से इसके बाद मुझे पंजाब के विकास कार्यों के लिए जालंधर जाना है इन दोनों कार्यक्रमों के बीच आज चंडीगढ़ का कार्यक्रम हो रहा है क्योंकि हमारा चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब हिमाचल इस पूरे क्षेत्र को जोड़ता है चंडीगढ़ के विकास से चंडीगढ़ के लोगों का जीवन तो बदलता ही है साथ ही हरियाणा हिमाचल पंजाब और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इससे बहुत लाभ होता है चिकित्सा सेवाओं के लिए तो चंडीगढ़ इस पूरे क्षेत्र में एक बड़ा हब है साथियों जब मैं चंडीगढ़ रहता था तो मुझे कई बार पीजीआई जाना होता था और कारण क्या तो कोई न कोई हमारे साथी या उनका परिवार चाहे जम्मू कश्मीर का हो पंजाब का हो हिमाचल का हो हरियाणा का हो कोई न कोई बीमार यहां आते थे तो मेरा मिलने जाना बड़ा स्वाभाविक रहता था और इसलिए मुझे पता है कि पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए ये आरोग्य की दृष्टि से एक बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र रहा है साथियों आज यहां चंडीगढ़ पीजीआई में एडवांस हेल्थ केयर फैसिलिटीज का विस्तार हो रहा है यहां एडवांस न्यूरोसाइंस सेंटर एडवांस मदर एंड चाइल्ड सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक ये प्रोजेक्ट लाखों लोगों को इलाज के और बेहतर सुविधा देंगे मुझे याद है 2015 में मैं चंडीगढ़ पीजीआई के दीक्षांत समारोह में आया था और मुझे खुशी है कि आज मुझे वर्चुअली भी वहां के सब पुराने साथियों से मिलने का अवसर मिल रहा है तब से अब तक इस दशक में पीजीआई की क्षमताओं में बड़ा विस्तार हुआ है मैं पीजीआई चंडीगढ़ के मैनेजमेंट की यहां के प्रोफेसर्स और युवा डॉक्टर्स की सराहना करता हूं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं साथियों जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि इसमें स्वच्छता की कितनी बड़ी भूमिका है और जब हमारी सरकार बनी थी तब हमने देश के लिए स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने इसके लिए

अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए। हमारे शहरों की स्वच्छ भारत रैंकिंग इसी प्रयास का हिस्सा है और चंडीगढ़ इसमें बेहतर प्रदर्शन का प्रयास भी करता रहता है। साथियों, मैं आज चंडीगढ़ के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी इंद्रजीत सिंह सिद्धू जी की भी सराहना करना चाहूंगा। उनकी पहचान ब्रूम वॉरियर की बनी हुई है। उन्होंने चंडीगढ़ में स्वच्छता को लेकर एक नई अलग जगाई है, लोगों को प्रेरित किया है। इसके लिए हमारी सरकार ने उन्हें इस साल पद्म सम्मान से भी सम्मानित किया है। साथियों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है, स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है। और मुझे खुशी है कि स्वच्छता को आज के इस कार्यक्रम से भी जोड़ा गया। आज यहां स्वच्छता से स्वागत इस पहल के तहत विशेष सफाई अभियान चलाया गया और मैं देख रहा था सोशल मीडिया में सारे लीडर लोग भी और जनता जनार्दन भी सफाई के काम में लगी थी। देश के अंदर एक खुशी का माहौल था इस सारी चीजों को देख करके। चंडीगढ़ के सभी भाई बहनों को मैं इसके इस पहल के लिए व्यक्तिगत रूप से बड़े गर्व के साथ आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, स्वच्छता के ऐसे अभियान देश में अनेक रोगों की रोकथाम में बहुत मददगार साबित हुए हैं। साथियों, एक समय था भारत के हेल्थ सेक्टर पर पूरी दुनिया चिंता जताती थी, किसी बड़ी आपदा का अंदेशा होता था तो लोग सवाल उठाने लगते थे कि भारत में क्या होगा। कोरोना के समय में हमने देखा है कि कैसे भारत ही विश्व की चिंताओं का केंद्र था, लेकिन हमारी सरकार ने भारत का सामर्थ्य भी बदला और विश्व का नजरिया भी बदला। जब कोरोना महामारी आई तो भारत मदद मांगने वाला देश नहीं था, बल्कि भारत दुनिया को मदद भेज रहा था। आज कितने ही देशों से लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भारत आते हैं। भारत मेडिकल टूरिज्म का बड़ा डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है। साथियों, ये बदलाव पिछले 12 वर्षों की ईमानदार कोशिशों और नीतियों का परिणाम है। 12 साल पहले हमने संकल्प लिया था हमारे देश के लोग स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में नहीं जिएंगे, हमारे देश के लोगों को इलाज की बेहतर सुविधाएं मिलेगी, कीमत में मिलेगी। पिछले 12 वर्षों की देश की सफलता इसी संकल्प का परिणाम है। बीते वर्षों में भारत ने अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार किया है। 2014 के बाद देश में 15 नए एम्स को मंजूरी दी गई है। आज देश के अलग अलग हिस्सों में नए एम्स काम कर रहे हैं। देश भर में सैकड़ों नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की संख्या भी बढ़ी है। यहां चंडीगढ़ में भी होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल बना है, यहां से थोड़ा दूरी पर। 2022 में मुझे इसके लोकार्पण का अवसर मिला था। आज हॉस्पिटल हजारों मरीजों की सेवा कर रहा है। साथियों, गांव गांव में प्राइमरी हेल्थ केयर सुविधाओं के

विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हर स्तर पर हेल्थ सिस्टम मजबूत हो, इसके लिए आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू किया गया है। इसके तहत देश भर में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स और पब्लिक हेल्थ यूनिट जैसी सुविधाओं का नेटवर्क तैयार हुआ है। आज शहरी और ग्रामीण इलाकों से लेकर जनजातीय क्षेत्रों तक देश में करीब 2.25 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी काम कर रहे हैं। आरोग्य मंदिरों में प्राइमरी इलाज की सुविधाएं तो है ही, साथ ही 12 अलग अलग हेल्थ पैकेज सर्विस भी यहां मिल रही है। इनमें करोड़ों लोगों की ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों की स्क्रीनिंग हुई है। साथियों, हमारी सरकार तकनीक के जरिए भी इलाज को सुगम बना रही है। हमने ई संजीवनी मिशन के जरिए टेली मेडिसिन की सुविधा शुरू की। इसके तहत आज देश में 48 करोड़ से ज्यादा टेली मेडिसिन कंसल्टेशन हो चुके हैं। दूर सुदूर इलाकों से भी लोग बड़े अस्पतालों से डॉक्टर से परामर्श कर रहे हैं। साथियों, स्वास्थ्य सेवाओं के इस विस्तार की वजह से आज देश में 90% से अधिक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है। हमारे यहां माता मृत्यु दर में 86% की कमी आई है और शिशु मृत्यु दर में भी बड़ी गिरावट आई है। साथियों, बीमारी के इलाज के साथ ही आज उतना ही फोकस प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी है। पोषण अभियान, मिशन इंद्रधनुष, योगा, एचपीवी वैक्सीनेशन, यूविन प्लेटफॉर्म, ऐसे कई अहम प्रयासों के कारण करोड़ों लोगों का जीवन सुरक्षित हो रहा है। साथियों, हमने देश को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प भी लिया है। इसके लिए टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। जन भागीदारी के जरिए जन जन को जागरूक किया जा रहा है। समय से टीबी की स्क्रीनिंग कराई जा रही है। मरीजों को इलाज मुहैया कराया जा रहा है। इसी का परिणाम है आज देश में टीबी का ट्रीटमेंट कवरेज 90% से ज्यादा हो गया है। पिछले साल आई WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 10 वर्षों के भीतर भीतर टीबी संक्रमण भी 21% कम हुआ है। इन प्रयासों का सबसे बड़ा लाभ देश के गरीब को हो रहा है, इसका लाभ हमारे मिडिल क्लास को हो रहा है और ज्यादा लाभ हमारी माताओं बहनों को हो रहा है, क्योंकि माताएं बहनें परिवार के काम को प्राथमिकता देती हैं। बीमारी को सहन करना ये माताओं बहनों ने जैसे अपना एक संस्कार बना दिया है, लेकिन ये प्रोएक्टिव प्रयासों के कारण माताओं बहनों का स्क्रीनिंग हुआ, उनकी देखभाल की गई और आज टीबी मुक्त होने में हमारी माताओं बहनों की संख्या भी बड़ी नोटपात्र है। भारत में हेल्थ सर्विसेज अब प्रिविलेज नहीं, आज हेल्थ सर्विसेज देश के सामान्य नागरिक का अधिकार बन रही है। साथियों, हेल्थ सेक्टर पर सरकार के फोकस का बहुत बड़ा लाभ भारत के युवाओं को भी हुआ है। हमारे युवा डॉक्टर इस बात से परिचित होंगे, पहले डॉक्टर बनने का सपना कितना मुश्किल होता था। युवाओं को डॉक्टर बनने के पर्याप्त मौके ही नहीं मिलते थे।
क्योंकि मेडिकल सीटों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या बेहद कम थी। हमने इस परिस्थिति को भी बदला है। आज देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगभग दोगुनी हुई है। एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है और अब तो चंडीगढ़ पीजीआई में भी एमबीबीएस कॉलेज को मंजूरी दे दी गई है। जल्द ही यहां भी एडमिशन शुरू हो जाएंगे। इससे देश के कितने प्रतिभाशाली युवाओं को ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिलेगा। देश को बड़ी संख्या में बेस्ट डॉक्टर्स मिलेंगे। साथियों, चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में कुरुक्षेत्र बॉयज हॉस्टल एंड मेस का उद्घाटन हुआ है। सेक्टर 46 के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नया हॉस्टल भी तैयार हुआ है। रिसर्च स्कॉलर्स हॉस्टल की नींव भी रखी गई है। हमारा प्रयास है कि हमारे युवाओं को रिसर्च के लिए बेहतर लैब्स, बेहतर फैकल्टी मिले। जब रिसर्च का माहौल मजबूत होगा तब इनोवेशन भी तेज होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डीपटेक, ऐसी सभी टेक्नोलॉजी में हमें भारत को आगे लेकर जाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि चंडीगढ़ के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, यहां के शिक्षक और यहां के युवा इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का रोडमैप होता है। इससे पहली बार देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को होलिस्टिक अप्रोच के साथ विकसित किया जा रहा है। आज चंडीगढ़ में कनेक्टिविटी को लेकर भी कई शुभारंभ हुए हैं। आईटी सिटी से कुराली तक 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईवे का उद्घाटन हुआ है। इससे एयरपोर्ट रोड पर दबाव कम होगा। मोहाली और खरड़ के लोगों को जाम से राहत मिलेगी। अंबाला चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड हाईवे से PR7 स्पेस पर इसकी आधारशिला भी रखी गई है। ऐसे सभी विकास कार्यों से उद्योग और कारोबार को गति मिलेगी। हमारे चंडीगढ़ में ईज ऑफ लिविंग और बेहतर होगी। साथियों, रीजनल कनेक्टिविटी पर फोकस बढ़ाते हुए आज जालंधर में रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण होने वाला है। इसका लाभ पंजाब के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र को होगा। साथ ही आज ही हरियाणा के जिंद से सोनीपत के लिए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी शुरू हुई है। क्लीन फ्यूल पर चलने वाली ये ट्रेन एक बहुत बड़ी शुरुआत है। मैं इसके लिए भी आप सभी को और देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, विकसित भारत की यात्रा में हमें फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर, फ्यूचर के ट्रांसपोर्टेशन पर और फ्यूचर की हेल्थ सर्विसेज के पर इसी आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ना है। हमें ऐसे फैसले लेने हैं जिनका लाभ वर्तमान पीढ़ी को तो मिले ही मिले, आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे। हमें ऐसे संस्थान बनाने हैं जो समय के साथ और मजबूत हो जाएं। बीजेपी एनडीए सरकार इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मैं चंडीगढ़, पंजाब,
हरियाणा, हिमाचल और इस पूरे क्षेत्र के

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: That if a boy from Ahmedabad with no capital and no connections could build, then there must be a thousand more Gautam Adanis sitting undiscovered.
11: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार। तो इनोवेटर्स, रजिस्ट्रेशन करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक। An initiative by Gautam Adani. यही है वंदे
12: भारतम। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
13: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
14: Really?
13: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's do it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
12: चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
15: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: According to sources telling NDTV, the special investigation team acting on the directions of the Supreme Court of India will submit its findings directly to the apex court. The SIT has sought additional time from the State Department to complete its final report, while an interim report is scheduled to be filed before the Supreme Court on Monday. The investigation pertains to allegations of financial irregularities in the handling of the donation received by the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust. The matter is now set to come up before the Supreme Court after the interim findings are placed on record. So this is the big development coming at this hour regarding the SIT that has sought more time for the final report to be submitted. The SIT to submit interim report to the Supreme Court on Monday. Ajay Dubey of NDTV is joining us live on this big story. Ajay, aap kya bata sakte hain SIT ko aur waqt kyun chahiye? Kyunki बीते कुछ हफ्तों में इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रही है, कई नाम भी सामने आ रहे हैं, बट एसआईटी ने क्या बताया है, कारण क्या है पूरे जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें और समय लेने के हेतु?
1: देखिए, एसआईटी की इस रिपोर्ट की बात की जाए तो पहले ये बताया गया कि समय पूरा जो कि दो दिन पहले हो गया था रिपोर्ट सबमिट करनी थी, पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में सरकार को भी नोटिस दिया गया है, ट्रस्ट को भी नोटिस दिया गया है और एसआईटी की रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी मांगी गई थी। अब ऐसे में प्राइमरी रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी तो पहले ही सार्वजनिक हो चुकी है, जो चोरी से जुड़ा मामला था। अब जो बड़े आरोप है, चाहे वो रोजगार नौकरी देने से जुड़ा हो, जमीनों की गड़बड़ियों से जुड़ा हो और दूसरे मामलों से जुड़ा हो, इन सब मामलों से जुड़ी हुई कंपाइल रिपोर्ट तैयार है और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करने की सरकार की तैयारी है। सरकार के वकील जब जिरह करेंगे कोर्ट में, सरकार का पक्ष रखेंगे, तो जो जो तलब किया था सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट को, उसे भी पेश करेंगे। इसी कारण से समय मांगा है थोड़ा, सोमवार के दिन अब ये बताया जा रहा है कि कार्रवाई होनी है, तो कुछ और समय लेकर लीगल जो फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा करने का एसआईटी का प्रयास है।
0: Ajay Dubey getting us the latest on this big development concerning the Ayodhya Ram Temple and the investigation by the SIT. More time has been sought, but the interim report will be submitted in the Supreme Court on Monday. And we'll head for a short break, but news and updates will continue on the other side. Keep watching.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: सबका राजा आकर मसाला।
11: That if a boy from Ahmedabad with no capital and no connections could build, then there must be a thousand more Gautam Adanis sitting undiscovered.
12: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार। तो इनोवेटर्स, रजिस्ट्रेशन करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक। An initiative by Gautam Adani.
13: यही है वंदे भारत।
14: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy. Every day.
15: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
16: Really?
15: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
14: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aur pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
17: Par jab insaan prakriti ke saath samanjasya ko aatmasat kar leta hai, to वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल में प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है, शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
18: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों से सरसों, थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: That if a boy from Ahmedabad with no capital and no connections could build, then there must be a thousand more Gautam Adanis sitting undiscovered.
10: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार। प्रो इनोवेटर्स, रजिस्ट्रेशन करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक। An initiative by Gautam Adani.
11: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
12: दिस इज द शो वेयर वी ब्रिंग यू ऑल द हॉट एंड हैपनिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल।
13: रियली
12: पैशन दैट मेड यू गैग, फिल्म्स दैट मेड यू फैन गर्ल, आर्ट दैट मेड इट टू द ग्राम एंड ट्रेंड्स दैट केप्ट अस विद द प्रोग्राम। Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
11: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli. Swadisht, sehatmand, har roz.
14: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
15: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार था। उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
16: NDTV traced each and every affected family and also visited multiple hospital wards.
17: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
18: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
19: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced action.
20: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
21: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal. What's happening? How?
20: The show that sets the prime time agenda.
21: We'll be deep diving into this topic to tell you what's happening.
20: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.

बड़ी भूमिका निभाएगा। ये गुरुओं की शिक्षाओं, उनके बलिदान और सेवा की परंपरा को जीवंत रूप में प्रस्तुत करने वाला प्रेरणा केंद्र बनेगा। हरियाणा की भाजपा सरकार ने हमारी सिख विरासत को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ये पवित्र काम शुरू किया है। साथियों, विकास कार्यों को गति देते हुए अब यहां जालंधर से कई नई रेल सेवाएं शुरू की गई है। आज अमृतसर से काशी के बीच रेल सेवा भी शुरू हुई है। इससे गुरु रविदास जी के भक्तों के लिए पंजाब से काशी जाना और अधिक आसान हो जाएगा। आज दौलतपुर चौक और करतौली के बीच नई लाइन भी शुरू हुई है। करतौली से अंबाला के बीच नई रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाई गई है। साथियों, आज ही लुधियाना बाईपास का शिलान्यास, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के एक और सेक्शन का लोकार्पण हुआ है। मैं ऐसे हर प्रोजेक्ट के लिए देशवासियों को और खास तौर पर पंजाब के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। साथियों, आज मैं विशेष रूप से जालंधर के लोगों की भी सराहना करूंगा, जिन्होंने स्वच्छता से स्वागत, पहल के माध्यम से इस कार्यक्रम को और सार्थक बना दिया है। श्री गुरु रविदास जी ने समरसता और सामूहिक प्रयासों का जो संदेश दिया था, उसे आप सभी ने अपने व्यवहार में जीवंत किया है। ये अभियान कर्तव्य भावना का भी उत्तम उदाहरण बन रहा है। साथियों, आज के दिन मैं इस मंच से पंजाब के महान सपूत सरदार तेजासी समुंदरी जी को भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। आज उनका 100वां शहादत दिवस है। उन्होंने अंग्रेजी शासन काल में सिख हितों की रक्षा के लिए अनेक आंदोलन किए। सरदार तेजासी जी ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। आज से शुरू हो रहे उनके शहादत वर्ष से जुड़े कार्यक्रमों से हम सभी को प्रेरणा मिलेगी। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार की भी प्राथमिकता है
भारत के हर नागरिक की सेवा, भारत के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना। और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है। साथियों, जो भारतीय रेल है, एक गरीब परिवारों की, मिडिल क्लास परिवारों की सवारी है। लेकिन 2014 से पहले तक रेलवे की क्या स्थिति थी, ये आप अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस सरकार नई ट्रेनों की झूठी घोषणा करके आराम से बैठ जाती थी। हमारे जो रेलवे स्टेशन है, इनको तो कांग्रेस ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। यहां तक कि अंग्रेजों के जमाने में जो स्टेशन बने थे, उनकी सूद लेने वाला भी कोई नहीं था। साथियों, भारतीय रेल का नेटवर्क इतना विशाल है कि रोज उसमें जितने यात्री सफर करते हैं, उतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं है। रेलवे के विकास के जो काम आज हो रहे हैं, ये 30-40 वर्ष पहले हो जाने चाहिए थे। लेकिन पहले की सरकारों की प्राथमिकता में ये काम था ही नहीं। गरीब और मिडिल क्लास को भी सुविधा चाहिए, इनको भी साफ सफाई चाहिए, इनके समय की भी एक वैल्यू है। ये पहले की सरकारें चर्चा तक नहीं करती थी। साथियों, ऐसी सोच से विकसित भारत नहीं बन सकता था। इसलिए बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। साथियों, जब आप यहां जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे, तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। ये केवल स्टेशन नहीं है, ये एक प्रकार से सिटी सेंटर है। जालंधर कैंट स्टेशन आधुनिक भी हुआ है और उसकी कैपेसिटी भी बहुत बढ़ गई है। ऐसे ही आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और साहिबजादा अजीत सिंह नगर स्टेशन का भी कायाकल्प हो गया है। साथियों, हमारे नए रेलवे स्टेशन व्यापार कारोबार का भी माध्यम बन रहे हैं। यहां जो लोकल कारीगर है, विश्वकर्मा साथी है, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनके उत्पाद स्टेशन पर बिक सके, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। और ये अमृत भारत स्टेशन हमारी विरासत, हमारी धरोहर के दर्शन भी कराते हैं। अब जैसे जालंधर है, यहां की पहचान स्पोर्ट्स से है, खेलकूद से है,
तो जालन

अंदर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहब स्टेशन जाएंगे तो वहां तख्त श्री केसगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन अब हमारी संस्कृति सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं। साथियों, हम अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेते हुए, उनका मान बढ़ाते हुए ही एक सशक्त राष्ट्र बन सकते हैं। इसी पवित्र भाव से ही आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास जी महाराज जी एयरपोर्ट किया गया है और चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और ये काम भाजपा सरकार ने किया है और हमें इस पर गर्व है। साथियों, ये धरती शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की धरती है। महाराजा रणजीत सिंह के शासन में खुशहाली भी थी, सुरक्षा की गारंटी भी थी और समाज में सद्भाव भी था। लेकिन पंजाब में आज क्या हो रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। यहां विज्ञापनों के दम पर विश्वासघात की तस्वीर छिपाई जा रही है। आज पंजाब में कानून व्यवस्था बेहाल है। कब कहां गैंगवॉर हो जाए, किस दिशा से गोलियां चलने लगे, कोई कह नहीं सकता। यहां व्यापार कारोबार करना मुश्किल हो गया है। सरेआम लोगों से फिरौती मांगी जा रही है। पुलिस थाने तक सुरक्षित नहीं है। आए दिन थानों पर अटैक होते हैं। और सबसे दुखद तो यह है

देश की राजनीति बदलने का दावा करते थे, लेकिन आज इनकी सच्चाई देश देख रहा है। दो तीन दिन पहले ही दिल्ली में इनके एक नेता को अदालत ने दोषी करार दिया है, उस पर दोष दंगे कराने का है, दोष एक पुलिस के आईबी अधिकारी की हत्या का है। और इन लोगों की बेशर्मी देखिए, अदालत ने सबूतों के आधार पर फैसला दिया, लेकिन ये लोग कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। ये लोग अदालत के फैसले भी मत मजहब उसमें भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनके वोट बैंक का सवाल है। साथियों, कुछ दिन पहले ही गुजरात में इनके एक एमएलए को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। ये सजा सरकारी अधिकारियों पर हमले और वसूली के मामले में सुनाई गई है। वसूली, उगाही, अवैध कब्जे, ये सब इनकी राजनीति का ट्रेडमार्क बन चुके हैं। ऐसे ही अनेक मामलों में कई सारे लोग तो अभी जमानत पर बाहर चल रहे हैं। यहां पंजाब में ही देखिए, जिसको स्वास्थ्य मंत्री बनाया उसको घुसखोरी के चलते बर्खास्त करना पड़ा। एक मंत्री पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप है। इनके एमएलए घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। ऐसे गिनते जाएंगे तो इनकी सरकार और इनकी पार्टी में कम ही लोग मिलेंगे जिन पर कोई दाग न हो। साथियों, जनता की सेवा का काम साफ नीयत से होता है, ईमानदारी की भावना से होता है, लेकिन आज जो पार्टी पंजाब में सरकार में है उसकी न नीयत साफ है और न ही वो ईमानदार है। उसकी पहचान ही कट्टर बेईमान पार्टी की है। साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहां लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया। और बड़ी बात यह है कि ये लूट कर्ज के पैसे पर भी चल रही है। पंजाब के नाम पर कर्ज लिया जा रहा है। पंजाब का बजट कर्ज का ब्याज चुकाने में लग रहा है। और यहां राज्य सरकार चला रहे लोग उस पैसे पर मौज कर रहे हैं। साथियों, आज हालत यह है कि पंजाब में विकास का हर काम ठप है। सिर्फ भारत सरकार की योजनाओं पर अपने नाम का स्टिकर लगाकर बेचा जा रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो पूरे देश में चल रहे हैं उन पर यहां अपना स्टिकर चिपका दिया। पूरे देश में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान भारत योजना चल रही है। यहां उसके साथ भी खेल खेले जा रहे हैं। साथियों, पंजाब का सामर्थ्य अद्भुत है।

0: यहां के किसानों में, यहां के नौजवानों में बहुत क्षमताएं हैं। पंजाब तेजी से विकसित हो सकता है, इसके लिए यहां भाजपा की डबल इंजन सरकार जरूरी है। आप सभी के सामने बीजेपी की राज्य सरकारों का उदाहरण है। जब से दिल्ली में डबल इंजन सरकार बनी है, तब से दिल्ली के विकास को नई गति मिली है। आपके पड़ोस में हरियाणा है, वहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी देती है। पंजाब में किसानों को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। केंद्र और हरियाणा सरकार कर्मचारियों को 60% डीए दे रही है। यहां 60% तो छोड़िए, जो मिल रहा है उसकी भी कोई पक्की गारंटी नहीं है। कर्मचारियों को अपना हक पाने के लिए भी धरना देना पड़ता है और बहनों बेटियों की पीठ पर तो इन्होंने छुरा भोंका है। बड़ी बड़ी बातें करके वोट तो ले लिया, लेकिन पूरे 50 महीने चुप रहे, वायदे की याद तक नहीं आई। अब तक बहनों के खाते में 50,000 रुपया आ जाने चाहिए था, लेकिन बहनों को सिर्फ झूठ मिला। और साथियों, पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी है उसका भी अपना ही रोना धोना चल रहा है। पंजाब में कांग्रेस में कुर्सी का किस्सा ही खत्म नहीं हो रहा। ये इसलिए नहीं लड़ रहे कि पंजाब का हित कैसे होगा, इनकी लड़ाई इसलिए है कि इनकी जो कुर्सी है वो किसके पास रहेगी। और साथियों, अकाली दल का भी यही हाल है, वो भी अपने ही स्वार्थों में उलझे हुए हैं। उनको भी पंजाब के लोगों की कोई परवाह नहीं है। साथियों, पंजाब में असली बदलाव भाजपा ही ला सकती है। पंजाब को विकसित बनाने का काम भाजपा ही करेगी। पंजाब को आत्मनिर्भर बनाने का काम भाजपा ही करेगी। पंजाब में नया निवेश आए, पंजाब में रोजगार के नए अवसर बने, पंजाब में बने प्रोडक्ट दुनिया के कोने कोने में पहुंचे, ये काम राज्य में बीजेपी की सरकार ही करेगी। साथियों, आज जालंधर आया हूं तो पंजाब के युवाओं से और जो खेलकूद की दुनिया में है, स्पोर्ट्स फील्ड में है, उनसे विशेष तौर पर अपनी बात कहूंगा। मुझे पंजाब के युवाओं के सामर्थ्य पर बहुत भरोसा है। हमने देखा है कि खेल के मैदान में पंजाब के युवा कैसे भारत की आन बान शान को ऊंचा रखते हैं। आज पोर्ट्स के गुड्स के लिए मशहूर इस शहर से मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया अभियान आपके लिए चलाया गया है, खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में कोच है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, स्पोर्ट्स साइंस है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी है, स्पोर्ट्स स्टार्टअप्स है। साथियों, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गया था, वहां इस विजन को लेकर काफी सारे समझौते हुए। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है। साथियों, हमें पंजाब की आन बान शान को नई ऊंचाई पर ले जाना है, हमें पंजाब का नया भविष्य बनाना है। मोदी हर दम हर पल पंजाब के लोगों के साथ है। साथियों, फिर एक बार सभी मेरे पंजाब के भाई बहनों को इन विकास कार्यों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: And that was Prime Minister Modi there in Jalandhar. He hit out at the AAP government of Punjab and said that Punjab needs double engine, and that the state of state has betrayed the women of Punjab. He also raked up the Congress in fighting. Of course, this at a time when a slew of developmental projects have been unveiled in Punjab today. Prime Minister Modi dedicated and laid the foundation stone for road and rail infrastructure that's worth ₹5,000 crore. He also inaugurated the redeveloped Jalandhar Cantonment Railway Station and launched 75 railway stations under the Amrit Bharat Station Scheme. Apart from that, of course, this is a battleground Punjab, and Prime Minister Modi said that it is only the double engine that can change the state of Punjab. This was after Prime Minister Modi inaugurated various rail lines, infrastructure worth ₹5,000 crore. At the epicenter is, of course, health and rail. This is a big push for the healthcare, roads and railway there in the state of Punjab. And on that note, we'll slip into a very short break. Come right back. Rossman lined up for you.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: वी आर ओवर जिमी।
11: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
12: From the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
13: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
14: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमोनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: We are over, Jimmy.
11: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PP अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
12: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV Newsroom, weekdays at 4 p.m.
13: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
14: Jante hain, main Elite Matrimony kyun recommend karta hun? 17 years of experience, largest database of elite profiles, aur 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: समर में बाल्टी तो चाहिए फॉर योर पसीना,
1: बाल्टी,
0: और मानसून में बाल्टी तो चाहिए फॉर छत का पसीना। पसीना मत बहाओ, बर्जर रूफ कूलेंट सील लगाओ, ये छत

0: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
1: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
2: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाह मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: वी आर ओवर जिमी।
4: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
5: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
6: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect.

0: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
1: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
2: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: वी आर ओवर जिमी।
4: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
5: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: going to be a tricky issue for the government to negotiate when the parliament session starts. Let's do a impartial analysis of this. Joining us now is senior journalist Sameer Chaugankar. Also with us is managing editor of NDTV, Akhilesh Sharma. Because stepping aside of the political wrangling, I'll start with you, Sameer ji. आपको लगता है कि इस बार राम मंदिर का मुद्दा गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है?
1: नहीं पद्मजा, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को दिक्कत आने वाली है, क्योंकि सेशन शुरू होने के पहले जो मामला पूरा हुआ था राम मंदिर को लेकर, अगर आप विपक्ष का रुख देखेंगे तो अखिलेश यादव के अलावा किसी ने भी इससे बहुत मामले को उठाने की कोशिश नहीं की है। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया, पवन खेड़ा ने इसके मामले में जिक्र किया, लेकिन कांग्रेस ने इसे कोई बड़ा एक इश्यू बनाने की कोशिश नहीं की। अखिलेश यादव जरूर इसको थोड़ा बनाने की कोशिश करते रहे। मुझे नहीं लगता कि इस मामले में कोई बड़ा डेवलपमेंट होगा और सरकार को कोई बहुत परेशानी विपक्ष इस मामले को लेकर करेगा। हालांकि कांग्रेस की जो बैठक हुई थी, संसदीय दल की बैठक, उसमें इस बात पर जरूर चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि कई अन्य विषय भी रहेगा जिस पर सरकार बात करेगी। हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर चर्चा करें, एथेनॉल का जो 20% का जो मिक्स है उसको लेकर चर्चा की जाए, और बाकी जो भूपेन यादव के जो अधिकारी थे जिनको हटा दिया गया था उसको लेकर चर्चा करें। राम मंदिर पर चर्चा जरूर विपक्ष करने की कोशिश करेगा, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर एग्रेसिव भूमिका अख्तियार की थी लगातार, तो मुझे इसकी संभावना कम नजर आती है। लेकिन विपक्ष इस पार्लियामेंट सेशन को चलने नहीं देगा तो उसे ये मुद्दा भी एक हाथ में लगा हुआ है जिस पर वो जरूर करेगा। सरकार इस पर बात करने की कोशिश करेगी, लेकिन विपक्ष कहता है कि वो मामले में सदन को चलने नहीं देगा। विपक्ष के पास बहुत और मुद्दे भी है, लेकिन यह मुद्दा विपक्ष मुझे लगता है कि अपने आप से गवा चुका है।
0: आप कह रहे हैं गवा चुका है, बट एटलीस्ट देयर इज सम वन इशू, दिस इज वन इशू अखिलेश जी, वेयर एवरीवन सीम्स टू बी ऑन द सेम पेज व्हेन इट कम्स टू द ऑपोजिशन, वेदर इट बी द समाजवादी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस पार्टी। व्हाट इज द गवर्नमेंट स्ट्रेटजी टू टेक दिस ऑन इनसाइड पार्लियामेंट व्हेन इट इज ब्रॉट अप?
2: Well, Padmaja, I think what the opposition is demanding is the accountability. They want that somebody should take responsibility whatever has happened, and the accountability should be fixed and the culprit should be punished. This is what the opposition's demand is. And what I think that Samajwadi Party especially will be very aggressive on this issue, because elections in Uttar Pradesh are just few months ahead now. And Samajwadi Party feels that on this issue, they can actually checkmate the BJP in Uttar Pradesh, especially because the Samajwadi Party was always on the back foot as far as this temple movement was concerned. That's why now they feel that this is the time for them to strike back at the BJP. First thing. Second thing is very clear that the opposition parties want to raise this issue. They are saying that this Ram Tirth Kshetra was trust was set up by the cabinet. The cabinet decided in February 2020 that this trust should be set up. This was after the Supreme Court verdict, and Prime Minister Narendra Modi himself announced about the setting of this trust in the Lok Sabha. So the central government is also answerable as far as whatever is happening in Ayodhya and especially in this trust. So they will also ask the government to reply whatever the allegations are there. The government should also come clean on this matter.
0: Okay, let me ask Sanju Verma of the BJP. Sanju Verma, this is one issue which is very, very troubling for the BJP. You have got BJP ruled states where multiple complaints have come. Today, for example, you've had the second arrest happening in the theft at Badrinath Dham in Uttarakhand. Already, Ayodhya has put you in a difficult situation. The opposition is saying Chanda Chori. Mallikarjun Kharge in his tweet said, Chanda Chori Aastha Se Khilwaad is going to be our number one issue.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: माँ भी हमेशा अपनी माँ के मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: We are over, Jimmy.
4: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
5: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy.

0: this is going to happen. Everyone is informed, everyone, but nobody took action. So say, sheer case of negligence now, which they have turned into a national disaster in their report. And only accountable persons are contractor and consultant. But for us, BMC is the whole soul, principal employer who looks after the work.
1: Yes.
0: They supervise the work, they inspect the work, they certify the work, they clear their bills. So how come BMC officials are not accountable, but contractor is accountable? Second was the committee itself is doing its own internal inquiry. BMC officials doing their own internal inquiry. So that's a matter of conflict. So we demanded that there should be a re-inquiry with independent panel and experts. And then the all the accountable persons should be punished equally, irrespective whether they are BMC officials or contractor. But I think this has gained more traction after NDTV report, the other media reports yesterday. And it has made an impact. And even the ruling party as well as opposition in the BMC house, they were on the same page that the report is having flaws. And they have rejected it. Even mayor have rejected it. Today we are learning that a re-inquiry has been initiated. So we want to thank the media and the politicians who have supported us across the party lines. And we are hoping now that an independent committee will be formed and we will get justice for Bihar.
1: Absolutely, because Johi ji, aapne dekha hai humare coverage mein ki mayor jo hai Mumbai ki Ritu Tavade, unhone BMC ka report ko kharij kara hai. She's rejected that report, called for an independent third party inquiry into it. Kya aap isko support karte hain? It is at least better than a clean chit that was earlier given. Johi ji.
2: जी फिर से इंक्वायरी शुरू की है, लेकिन हमारे उनसे यही मांग है कि इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई जाए जिसमें एक्सपर्ट लोग रहें, मे बी फ्रॉम रोड डिपार्टमेंट, रिटायर्ड जजेस और फ्रॉम गार्डन डिपार्टमेंट, ताकि निष्पक्ष आपका उनका वो रिपोर्ट आई और बीएमसी ऑफिशियल्स जितना हो के नहीं इन्वॉल्व, नहीं तो फिर वो आ नहीं पाता है. वो इन्वॉल्व करना चाहते हो ठीक है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा.
1: गौरव, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट आर यू रिसीविंग राइट नाउ फ्रॉम द गवर्नमेंट? इज देयर एनी सपोर्ट फॉर यू? आर यू हैविंग टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल ऑफ दिस, ऑल दिस डेवलपमेंट्स बाय योरसेल्फ? व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट डू यू हैव? एंड आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज पीपल आर वेरी कंसर्न्ड फॉर बोथ ऑफ यू. दे आर वंडरिंग दैट इन योर टाइम ऑफ ग्रीफ, डू यू आर यू हैविंग टू गो आउट देयर एंड यू नो कीप ट्रैक ऑफ ऑल दीज डेवलपमेंट्स दैट आर हैपनिंग एज फार एज इंक्वायरीज आर कंसर्न्ड, और डू यू हैव सपोर्ट?
0: सी, आफ्टर द इंसिडेंट वी हैव लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम लोकल एमएलए कोऑपरेटर्स एंड आवर रिलेटिव्स फ्रेंड्स. सो टिल दैट टाइम वी डोंट हैव एनी इशू. बट ऑन दिस रिपोर्ट एंड बीएमसी कमिटी, there's no one from BMC who has came forward and took cognizance from us or have interacted with us till date.
1: Johi ji, BMC se koi nahi aaya aapke paas? कोई मैसेज भी नहीं आया, कोई कॉल भी नहीं आया बीएमसी से? बिकॉज जैसे हम बोलते हैं, द बक स्टॉप्स विद द बीएमसी. इसमें दे आर आंसरेबल फॉर व्हाट हैज हैपेंड विद विहान. क्या आप ये कह रहे हैं एनडीटीवी पर कि बीएमसी से कोई मिलने नहीं आया आपसे, फोन नहीं आया, कोई मैसेज भी नहीं आया? जूही जी,
2: शुरू में उनकी मेयर आई थी हॉस्पिटल में, वो लोग हमारे साथ पूरे टाइम थे, काफी पॉलिटिशियंस भी आए, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद जब कमेटी बनी तब तक रिपोर्ट आई, बीएमसी से कोई नहीं, ऑफिसर्स ने इंटरेक्ट नहीं किया. हमारे लोकल एमएलए एंड कोऑपरेटर, दे आर स्टिल इन टच विद अस, लेकिन बीएमसी ऑफिसर्स से कोई नहीं.
1: आई वॉन्ट टू एंड बाय आस्किंग समथिंग गौरव, बिकॉज यू नो यू सेड समथिंग टू मी दैट struck me as a way to remember little Vihan. We've all seen that photograph of him. We all saw that heartbreaking picture of Johi ji on the day holding his cricket bat. He was very passionate about cricket and you want to do something to keep his memory alive through cricket. Can you tell us about how you want to do this and if there is any way that I personally or NDTV can help you in this mission?
0: We are thinking that there are some underprivileged children who are passionate about sports, particularly cricket, and also the education, they are facing issues. So we can get some kind of scholarship for sponsoring their cricket coaching and their studies. So it will be a good example set, and how this will also set an example how Vihan wants to see the things. We were very helpful for the other children, other people. So I think this will be a good memory for us. And in this, we expect the some government help, if it's there, will be helpful. Else, we can also pursue more.
1: जूही जी, कोई भी लास्ट कमेंट्स आप रखना चाहते हैं विहान के मेमोरी में? हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? एनडीटीवी आपके साथ खड़ा है ऑल द टाइम. एनी लास्ट वर्ड्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद द कंट्री दैट इज वाचिंग यू एंड इज होपिंग फॉर जस्टिस फॉर विहान?
2: आई जस्ट वांट टू से कि कुछ ऐसा कमिटी निकाले कि जिससे आगे किसी भी फैमिली को ऐसा दिन नहीं देखना पड़े. एंड आई वांट जस्टिस फॉर माय सन.
1: Gaurav and Juhi, again, I will end by saying that your grief is unimaginable to most of us, but all we can really do is stand with you, pledge our support always. And as the channel that first reported Vihan's name and this entire story last week, I promise you we will not move our cameras away and we will continue to pursue justice with you. Thank you very much in solidarity with you, Gaurav and Juhi. Thank you.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशल।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।
5: We are over, Jimmy.
6: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
8: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
0: देश का टायर जेके टायर।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आकर मसाला।
5: We are over, जिमी।
6: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
8: व्हेन अदर्स आर वार्मिंग अप, आई एम रेयरिंग टू गो। द स्टोरीज दैट मैटर, द स्टोरीज दैट शेप योर लाइफ।
9: हेलो एंड वेलकम टू वॉचिंग प्राइम 5 विद प्रिया शर्मा।
8: The show that sets the prime time agenda.
9: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
8: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
10: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
11: These are kind of awards and jury lineup. You are truly giving it the right weightage.
12: I think it's heartening to see talent that there is in across India Inc.
13: We should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth but also on bringing good governance.
14: Be part of jury and vote on the people, the men, the women, the companies in India who have the right stuff is a great opportunity for us.
15: For us, the biggest thing is trust. That's what we provide.
16: We need leaders in India that can help take India being a global superpower.
17: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
10: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
18: That if a boy from Ahmedabad with no capital and no connections could build, then there must be 1,000 more Gautam Adanis sitting undiscovered.
19: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार। प्रो इनोवेटर्स, रजिस्ट्रेशन करो वंदे भारतम.org पर।

0: are past that point now because that report has been rejected. But how did you feel when the BMC came forward with that initial report, pretty much giving themselves a clean chit?
1: Right. So when the incident happened and the inquiry committee was formed, we were hopeful that the justice will be served in a proper manner and it will be set an example to everyone. But when the reports came out a few days back, what we learned through media, it was quite shocking and we were quite angry also with the outcome. There were a lot of loopholes in that report. Everyone was knowing that this is going to happen. Everyone is informed, everyone, but nobody took action. So say, sheer case of negligence now, which they have turned into a national disaster in their report. And only accountable persons are contractor and consultant. But for us, BMC is the whole sole principal employer who looks after the work.
0: Yes.
1: They supervise the work, they inspect the work, they certify the work, they clear their bills. So how come BMC officials are not accountable, but contractor is accountable? Second was the committee itself is doing its own internal inquiry. BMC officials are doing their own internal inquiry. So that's a matter of conflict. So we demanded that there should be a re-inquiry with independent panel and experts. And then the all the accountable persons should be punished equally, irrespective whether they are BMC officials or contractor. But I think this has gained more traction after NDTV report, the other media reports yesterday. And it has made an impact. And even the ruling party as well as opposition in the BMC house, they were on the same page that the report is having flaws. And they have rejected it. Even mayor have rejected it. Today we are learning that a re-inquiry has been initiated. So we want to thank the media and the politicians who have supported us across the party lines. And we are hoping now that an independent committee will be formed and we will get justice for Bihar.
0: Absolutely, because Juhi ji, aapne dekha hai hamare coverage mein ki mayor jo hai Mumbai ki Ritu Tavade, unhone BMC ka report ko kharij kara hai. She's rejected that report, called for an independent third party inquiry into it. Kya aap isko support karte hain? It is at least better than a clean chit that was earlier given, Juhi ji.
2: जी फिर से री इंक्वायरी शुरू की है लेकिन हमारे उनसे यही मांग है कि इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई जाए जिसमें एक्सपर्ट लोग रहें और मे बी फ्रॉम रोड डिपार्टमेंट रिटायर्ड जजेस और फ्रॉम गार्डन डिपार्टमेंट ताकि निष्पक्ष आपका उनका वो रिपोर्ट आई और बीएमसी ऑफिशियल्स जितना हो के नहीं इन्वॉल्व नहीं तो फिर वो आ नहीं पाता है वो इन्वॉल्व करना चाहते हो ठीक है लेकिन एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
0: गौरव, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट आर यू रिसीविंग राइट नाउ फ्रॉम द गवर्नमेंट? इज देयर एनी सपोर्ट फॉर यू? आर यू हैविंग टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल ऑफ दिस ऑल दिस डेवलपमेंट्स बाय योरसेल्फ? व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट डू यू हैव? एंड आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज़ पीपल आर वेरी कंसर्न्ड फॉर बोथ ऑफ यू. दे आर वंडरिंग दैट इन योर टाइम ऑफ ग्रीफ डू यू आर यू हैविंग टू गो आउट देयर एंड यू नो कीप ट्रैक ऑफ ऑल दीज डेवलपमेंट्स दैट आर हैपनिंग एज़ फार एज़ इंक्वायरीज़ आर कंसर्न्ड और डू यू हैव सपोर्ट?
1: सी आफ्टर द इंसिडेंट वी हैव लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम लोकल एमएलए कोऑपरेटर्स एंड आवर रिलेटिव्स फ्रेंड्स सो टिल दैट टाइम वी डोंट हैव एनी इशू बट ऑन दिस रिपोर्ट एंड बीएमसी कमिटी there's no one from BMC who has came forward and took cognizance from us or have interacted with us till date.
0: Juhi ji, BMC se koi nahi aaya aapke paas? कोई मैसेज भी नहीं आया, कोई कॉल भी नहीं आया बीएमसी से? बिकॉज जैसे हम बोलते हैं द बक स्टॉप्स विद द बीएमसी, इसमें दे आर आंसरेबल फॉर व्हाट हैज हैपेंड विद विहान. क्या आप ये कह रहे हैं एनडीटीवी पर कि बीएमसी से कोई मिलने नहीं आया आपसे, फोन नहीं आया, कोई मैसेज भी नहीं आया? जूही जी,
2: शुरू में उनकी मेयर आई थी हॉस्पिटल में, वो लोग हमारे साथ पूरे टाइम थे, काफी पॉलिटिशियंस भी आए, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद जब कमेटी बनी तब तक रिपोर्ट आई, बीएमसी से कोई ने ऑफिसर्स ने इंटरेक्ट नहीं किया. हमारे लोकल एमएलए एंड कोऑपरेटर दे आर स्टिल इन टच विद अस, लेकिन बीएमसी ऑफिसर्स से कोई नहीं.
0: आई वांट टू एंड बाय आस्किंग समथिंग गौरव, बिकॉज़ यू नो यू सेड समथिंग टू मी दैट struck me as a way to remember little Vihan. We've all seen that.

0: You know, first and foremost, I take strong objection and I condemn Anish vocally. Ghanshyam Tiwari's use of the word accomplice, accomplice, accomplice for Prime Minister Modi. Accomplice kise kehte hain, main aapko batati hu. After the 2010 and 2012 Varanasi bomb blast, your boss Akhilesh Yadav went and knocked on the doors of the Allahabad High Court saying Indian Mujahideen nirdosh hai. You are the people who have Hindu phobia written all over you. And you have the audacity to lecture Prime Minister Modi. 500 saal ki civilizational battle ke baad, Ram Mandir came to fruition because of Narendra Modi.
1: See, this is the trap, Ghanshyam Tiwari. This is the trap that you will fall into. The moment you bring it up in parliament as well, this is what will happen. 500 years of civilizational history will be narrated to you.
2: We want to fall into this trap because everybody in India today understands ki Ram Bhagwan BJP ka business hai. अगर वो मंदिर के चंदा में चोरी कर सकते हैं, मंदिर के जमीन में चोरी कर सकते हैं, पत्थरों में चोरी कर सकते हैं, और जो राम तीर्थ है, जिन लोगों को उसमें ट्रस्टी बनाया गया, वो सीसीटीवी के सामने चोरी हो सकती है, तो ये देश के लोग जानते हैं कि चुनाव से लेकर के चढ़ावे तक बीजेपी का बिजनेस राम भगवान से जुड़ा हुआ है, एंड वो बिजनेस एक स्कैम के रूप में एक्सपोज हुआ है. अब देश के प्रधानमंत्री को बताना है कि क्या वो इसमें गुनहगार है या गवाह है. आदित्यनाथ जी को बताना चाहिए क्या वो गुनहगार है गवाह है, क्योंकि ये आप तो गए नहीं पद मजा वहां पे. हर बार आपने तो मार्केट की नहीं, संजू वर्मा नहीं गई. देश के प्रधानमंत्री हर एक महीने में चले जाते थे कैमरास के साथ. आदित्यनाथ हर एक महीने के बाद पे चले जाते थे कैमरास के साथ. इन लोगों ने नामित किया.
1: नहीं, बट आदित्यनाथ तो अभी भी जा रहे हैं ना. आफ्टर दिस होल कंट्रोवर्सी स्टार्टेड, योगी आदित्यनाथ हैज गॉन देयर ट्वाइस एंड फार फ्रॉम सीमिंग ऑन द बैक फुट, ही इज सीमिंग मोर अग्रेसिव देन एनीथिंग. इन फैक्ट ही माइट बी एनीवेयर फ्रॉम बरौनी टू बलिया. ही हिमसेल्फ ब्रिंग्स अप द राम टेंपल इशू एंड ही सेज दोज पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट आस्था, आस्क देम दिस क्वेश्चन. दोज पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट आस्था, दे आर द वंस हु बिलीव इन काउ स्लॉटर. दोज पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट आस्था, they don't talk about Mathura. If anything, it seems like Yogi Adityanath wants you to bring up this issue, sir.
2: Padmaja ji, chori aur sina zori humme se kisi ne invent nahi kiya. We have not invented this word chori aur sina zori ya chor machaye shor. As I say, and I want to repeat, Yogi Adityanath is either an accomplice or witness.
1: Okay, very quickly, Sanju Verma respond. Very quickly, Sanju Verma respond. Then I want to bring in the second big issue this session. Yes.
0: उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये हाल अखिलेश यादव और उनके प्रवक्ताओं का है. लेट मी जस्ट मेक वन थिंग वेरी क्लियर. चंदा चोरी हुई, जी हाँ हुई. 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, यस. एसआईटी एसटीएफ वर कॉन्स्टिट्यूटेड, यस. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, यस. तो मोदी सरकार ने क्या छुपाया? कुछ नहीं. उल्टा मोदी सरकार ने कहा दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए. और ये अखिलेश यादव की पार्टी, अखिलेश यादव को क्या गोमती स्कैम में बाइज्जत बरी किया गया? The case is still on. अखिलेश यादव को लैपटॉप स्कैम में बाइज्जत बरी किया गया? नहीं, अभी भी केस चालू है. अखिलेश यादव को सैंड माइनिंग स्कैम में क्या बेइज्जत किया गया? जी हाँ. और बरी किया गया? जी नहीं. तो आप यहाँ बैठकर जिस अखिलेश यादव की दुहाई दे रहे हैं, गोमती स्कैम से लेकर सैंड माइनिंग स्कैम से लेकर लैपटॉप स्कैम तक, अखिलेश यादव हैज नॉट कवर्ड हिमसेल्फ इन ग्लोरी एंड नोबडी इज अंडर एनी डाउट that Akhilesh Yadav now wants to cling on to this Ram Mandir issue simply to gain political mileage.
1: Okay.
0: You are the same party whose leader Swami Prasad Maurya said, Ram Charit Manas ko aag laga do. And he said this after leaving the BJP and joining the Samajwadi Party. क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने पार्टी से निकाला?
1: ओके, बिकॉज यू नो दिस इज नॉट गोइंग टू बी दी ओनली इशू. वेरी क्विकली समीर जी, आपने शुरू में बोला कि ये टॉपिक जो है अब इसका रेलेवेंस ओवर हो चुका है. आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी तो मुद्दा अभी भी गर्म है. मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में है, सुनवाई उस पर चल ही रही है, सीबीआई की मांग हो ही रही है. आपको क्यों लग रहा है कि अभी मुद्दा पुराना हो चुका है या खत्म हो चुका है?
3: नहीं, मुझे लगता है कि देखिए पद्मजा, ये इशू उठा कौन रहा है? क्या कांग्रेस को राम मंदिर को लेकर कोई क्रेडिबिलिटी रही है? क्या समाजवादी पार्टी की रही है? और समाजवादी पार्टियां जिस बात को उठा रही है, लेकिन वही समाजवादी पार्टी जिसमें मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम कहने पर गर्व महसूस होता था, कार सेवकों पर गोली चलाई थी, राम गोपाल यादव जब पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं कि
1: समाजवादी पार्टी नहीं है, बट एक ऑर्गेनिक गुस्सा तो लोगों में हो ही सकता है. एंड बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग मेजोरिटी ऑपोजिशन दे विल बी द माउथपीस फॉर दैट ऑर्गेनिक गुस्सा। लोगों में अगर गुस्सा,
3: लोगों में गुस्सा जरूर होगा, लेकिन लोग इस बात को भी जानते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के राम जन्मभूमि का मुद्दा एक आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था उसके पहले से भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि की जिक्र करती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 1980 में बनी, उसके पहले से लगातार लालकृष्ण आडवाणी ने उसके लिए रथ यात्रा की है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 राज्यों की सरकारें मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल की सरकारें को उसके अंदर गवा दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी का यह इशू रहा है और मुझे लगता है कि 2 इशू के ऊपर न समाजवादी पार्टी न विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकता है, एक राम जन्मभूमि हिंदुत्व के मामले पर और प्रधानमंत्री मोदी के मामले पर। मोदी और हिंदुत्व और राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का ऐसा है जिसका जवाब विपक्ष के पास नहीं है, वो कितनी भी कोशिश कर ले। और मुझे लगता है अगर जवाब विपक्ष इस पर आक्रामक होता तो संसद के पहले सड़क पर उसको लड़ाई लड़ता। राहुल गांधी का एक बयान आना, विपक्ष के इस मामले में कुछ न बोलना, मुझे लग रहा है कि वो इस बात को विपक्ष जानता है कि हम जितना हिंदुत्व पर और जितना हम राम मंदिर पर बात करेंगे उतना हमारे खिलाफ जमीन पर माहौल बनेगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि हिंदुत्व और राम मंदिर उनके द्वारा बनाए हुआ पूरा मामला रहा है।
1: ओके,
3: उनके साथ ही जुड़ेगी। विपक्ष को इससे कुछ हासिल नहीं होना है कि वो कहावत है ना कि दुविधा में दोनों गए माया मिले न राम। अखिलेश यादव दुविधा में और अखिलेश अगर इसमें पढ़ेंगे तो दुविधा में न राम मिलेंगे न रहीम का वोट मिलेगा। तो अखिलेश यादव को अपने कोर वोट की चिंता करना चाहिए, राम मंदिर के मामले को बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं रखना।
1: ओके, मायावती जी का साथ तो छूट ही चुका है, अब शायद श्री राम का मुद्दा वो उठाएंगे कि नहीं माया तो गई, अभी राम है उनके पास मुद्दे के लिए। दैट्स योर एनालिसिस। बट देयर इज द अदर बिग इशू आल्सो, इज द डीलिमिटेशन बिल coming in this session or not. In the agenda for business, the Constitution Amendment Bill has not been listed, which makes one wonder what is going on. What is going on with that bill? It is the main agenda, one of the main things that the government really wanted to push. To that end, sources have now told NDTV that in a meeting at Kartavya Bhavan today, the decision for a fresh push to the delimitation bill has been taken. Rajnath Singh, Defence Minister, chaired this meeting of NDA ministers to chalk out the government strategy in Parliament, and in it, NDA ministers who were present were asked to reach out to different political parties. Specific responsibilities have also been assigned to all the ministers, even as the centre has begun consensus-building talks with several political parties on this. Akhilesh ji, you've spoken of this man-to-man marking which was decided today in the meeting that Rajnath Singh chaired. What is the strategy ahead? What is the kind of outreach?
4: Well, the strategy is very clear, Padmaja. They want to have 2/3 majority in both the houses. And unless they are assured of that kind of majority, they will not bring the bill. That's why it does not figure in the agenda. But it does not mean that they will not bring it. What they are saying very clearly that they are talking to other political parties, especially the parties which opposed the same constitutional amendment bill in April this year, and they want to convince them to support this time. They are saying that what all the political parties want, they want to have an assurance and also a provision within the bill that 50% of the seats in Lok Sabha and all the state assemblies will be increased. This is the kind of assurance they want. Beat DMK, beat NCP, Sharad Pawar, all these parties want this kind of assurance. In fact, Shiv Sena UBT, Sanjay Raut, who has been very vocal in opposition to this government, he has also said that they will consider if the government brings this provision. So now the government is talking to all these political parties.
1: So this new bill will have that 50% the 50% provision clearly written in black and white.
4: That's correct, because if you recall, Padmaja, even on 17th April, when the voting was taking place, just before that, Home Minister Amit Shah was very categorical. He urged the opposition parties that you please adjourn the house for 1 hour and we'll bring this amendment to increase, to have this provision that 50% seats will be increased. But the Congress party was not ready at that point of time.
1: Even but today, when will this bill be circulated? Because here is what the Congress keeps saying. That you keep bulldozing all your bills, you don't show us the copy. Mallikarjun Kharge, in fact, has written a letter saying, listen, you please have an all-party meeting. You show us a copy of the bill so that we can discuss each provision, we can go over it. Is the bill ready? When are they going to show the bill to the opposition?
4: No, they will not show it to the opposition right now. What they are telling us that the bill will go to the cabinet because this amendment has to be approved by the cabinet. Once it is approved, then it will be circulated if the government wants to bring the bill in this current session of monsoon session of the parliament. But what they want to, the strategy is very clear, Padmaja. They want to isolate the Congress party and also the Samajwadi party, because Samajwadi party will never support this bill, even though Uttar Pradesh is going to be the largest beneficiary. Uttar Pradesh will have 80 plus 40, 120 Lok Sabha seats, which is going to be the largest share in the Lok Sabha. Sabha. Despite that fact, Samajwadi Party cannot be seen supporting a bill brought by the BJP and also the Congress Party. So apart from these two parties, Congress and the Samajwadi Party, they are hoping that all other political parties, including DMK, NCP, Sharad Pawar, Shiv Sena, UBT, even JMM and RJD, they may support it.
1: Sanju Verma, bill to dikha do bhai. आप ऐसा कैसे करता है? जयराम रमेश टुडे गेव द लाइन ऑफ द सेंचुरी. ही सेड व्हाट दिस गवर्नमेंट वांट्स टू डू इट डजंट टेल, व्हाट इट टेल्स इट नेवर डज. सो योर एजेंडा फॉर बिजनेस बेसिकली नोबडी इज बिलीविंग ओनली नाउ.
0: यू नो पद्मजा, द बीजेपी लार्जर पॉलिसी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस विल नॉट बी डिक्टेटेड बाय मल्लिकार्जुन खड़गे.

0: spree in a 25,000.
1: Okay, if you're talking about a shopping spree, very, you know, on a lighter note, I want to remind you, Ghanshyamji, even you were part of another party earlier. Now you've come to the Samajwadi Party.
0: It's not a lighter note.
1: It happens in politics.
0: Comment.
1: It happens.
0: I am not part of any shopping spree. This is not a job. But what BJP is doing is...
1: No, I'm sure you went because you started agreeing with Samajwadi Party as compared to the JDU. But it's fine. It happens in politics.
0: Using ED, using CBI, using corruption money, using all kinds of scandals.
1: Okay.
0: Never ever.
1: Okay, Ghanshyam Tiwari is clear, Sameer ji. Just a second, Sanju Verma, I'll let you respond. But very quickly, because Ghanshyam Tiwari as a spokesperson and a firm believer in the ideology of Samajwadi Party is saying that their stand will still remain the same. Samajwadi Party completely off board hai when it comes to delimitation?
2: फिलहाल तो ये नजर आ रहा है लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव के लिए बहुत मुश्किल होगा. अभी 8 महीने के बाद उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है. अखिलेश यादव इसको अपोज करेंगे, भारतीय जनता पार्टी से फ्लोर पे पास करा लेगी. फिर चुनाव में अखिलेश यादव को जवाब देना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का इश्यू बनाएगी किस तरीके अखिलेश यादव ने सीट बढ़ाने को लेकर और महिला आरक्षण को लेकर किस तरीके से विरोध दर्ज किया. मुझे लगता है अखिलेश यादव के लिए बहुत आसान नहीं होगा और अखिलेश यादव को ये लगता है कि भैया भारतीय जनता पार्टी पास कराने की स्थिति में है तो अखिलेश यादव उसका समर्थन भी कर सकते हैं.
1: अभी ये बात हो रही थी कि रामगोपाल यादव को जो वो कह रहे थे, क्या नाम है उनका, भूल गई, जो मंत्री है वहां पे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा था ना कि रामगोपाल यादव, ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने कहा है कि एक फाइल दी गई है, अमित शाह को फाइल दी है रामगोपाल यादव ने संसद के अंदर, तो क्या वो बात हुई है या नहीं हुई है?
2: नहीं, ओम प्रकाश राजभर का तो बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते. वो तो उन्होंने आज ही बयान जिस तरीके से दिया है कि भाई रहना होगा तो अमित शाह और मोदी के हिसाब से, अदरवाइज कोई पार्टी रह नहीं पाएगी. मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से तैयारी करी और अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि अब बिल पास होना है और हो सकता है कि अखिलेश यादव अंतिम समय इसका समर्थन कर दे. अभी यह तय नहीं कि उसका विरोध करेंगे क्योंकि इस तरीके से उनका बहुत स्पष्ट बयान नहीं आया है. यह बात सही है कि सरकार चाहेगी कि कांग्रेस को छोड़कर सारे दल इसका समर्थन करें और लगभग सरकार वहाँ चली गई है. कांग्रेस के साथ सिर्फ समाजवादी पार्टी फिलहाल नजर आ रही है. बाकी शरद पवार, एनसीपी की जो पार्टी के शरद पवार है, वो भी समर्थन देने को तैयार हो गए. झारखंड मुक्ति मोर्चा भी लगभग तैयार है समर्थन देने के लिए. तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा और फिर चुनाव में उसका सामना करना पड़ेगा.
1: ओके, एनसीपी शरद पवार तो आई थिंक इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी ऑन इट्स ओन, इट डिजर्व्स अ लार्जर डिस्कशन. अखिलेश जी, एनी बैक चैनल विद समाजवादी पार्टी दैट यू नो ऑफ, इफ नॉट विद अखिलेश यादव डायरेक्टली, सम एमपीज इन हिज पार्टी कुड एब्स्टेन or vote a different way?
3: Well, that's a very interesting question. I think Ghanshyam ji should answer this because I was about to ask him about this, that on the day of polling, what is the guarantee that some of the MPs, they do not fall sick or they have some family emergency? It may happen or it may not happen. I do not know. But as far as Samajwadi Party is concerned, I think what they did in April, now they are थोड़ा सा न्यूआंस किया अपनी पोजीशन को, इन द सेंस दैट अखिलेश यादव इज नॉट टॉकिंग अबाउट रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम वुमेन. इज सेइंग दैट मुस्लिम वुमेन शुड बी गिवन रिजर्वेशन, देर शुड बी सेपरेट रिजर्वेशन फॉर देम ऑल्सो, लाइक एससी एसटी एंड ओबीसी रिजर्वेशन शुड बी देयर. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग, एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द डिलिमिटेशन शुड बी वाइडर. सो ऑन दीज टू और थ्री पॉइंट्स आई थिंक अखिलेश यादव हैज चेंज दिस पोजिशन अ बिट. बट डिस्पाइट दैट फैक्ट, आई वॉज मैंशनिंग अर्लियर, जस्ट बिकॉज द असेंबली इलेक्शन आर 6-7 months ahead, it is very difficult for him to completely support a bill which has been
1: brought by the BJP. But who are these MPs who could fall sick?
3: I don't know. Ask him.
1: I'm sure you have some inside news. Ghanshyam ji, anyone's temperature that you have sensed?
0: Akhilesh.
1: Feeling feverish?
0: And Sameer ji and also Sanju Verma. All three confirmed the model. The model is scam. Sabotage. What he said was somebody will fall sick. Corruption, somebody will be in the shopping spree, arm twisting, somebody will be arm twisted using ED, CBI and other things, and manipulation, the system will be manipulated. Ram Madhav, General Secretary at that time, on a TV interview said, and you were part of that interview probably, Padmaja,
1: okay.
0: He had been asked about an election in which BJP had minority and yet BJP wanted to form the government. The interviewer asked him, how will you form the government? He said, we have Amit Shah, we don't need majority.
1: Okay, I'll get Sanju Verma. Sanju Verma, you know he's just baiting you. Be that as it may, wait for the monsoon session to get started, just in case some of his MPs decide to fall sick, or just in case Akhilesh ji has a change of heart, then you will have your moment with Ghanshyam Tiwari. But go on, answer him now.
4: You know, first and foremost, I don't think anyone is baiting me. If reckless allegations are made, as the national spokesperson, I will say what needs to be said. Point number two, let me educate Ghanshyam Tiwari. The year was 2003. मायावती की सरकार को मुलायम सिंह यादव ने गिराया. पहले 13 एमएलए उनके लेकर चले गए, फिर 24 एमएलए लेकर चले गए. बाय द टाइम द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड ऑन द मैटर, मुलायम सिंह यादव हैड कंप्लीटेड हिज फुल टर्म. और ये पार्टी बीजेपी को नैतिकता पर भाषण देती है. अखिलेश यादव पार्टी and Mayawati contested the Lok Sabha elections in 2019 together. Mayawati's party got 10 seats, Akhilesh Yadav was reduced to 5 seats. So what happened? In 2019, when Jhatka got Akhilesh Yadav, Mayawati ke saath apna gathbandhan tod diya. Aur yahi Akhilesh Yadav ki party ke neta Ram Gopal Yadav kehte hain Kamalnath kaun hai? Kamalnath kehte hain Ajay Rai kaun hai?
1: Okay.
4: अखिलेश यादव कौन है? और आप यहाँ बैठकर खुद के दल को संभाल नहीं पाते और बीजेपी को सलाह और मशवरा दे रहे हैं. प्लीज गेट अ रियलिटी चेक.
1: यू नो एनीवे आई थिंक इट्स अमेजिंग व्हेन एनी पॉलिटिकल पार्टी टॉक्स अबाउट नैतिकता पॉलिटिकल मोरालिटी ऑन टीवी. और नैतिकता से याद आया मुझे अबाउट एनसीपी शरद पवार एनसीपी एसपी people who could be the key players in what is going to happen in the next few weeks and helping NDA shore up the numbers. And three parties really stand out in this. One, I've already mentioned, NCP Sharad Pawar, DMK, and then Trinamool Congress. First up, of course, is the NCP Sharad Pawar. Will they or won't they? The most unpredictable party in the history of India is still keeping everyone guessing. Then there is the DMK, which literally burnt the delimitation bill just 3 months ago in April. M.K. Stalin literally took a copy and set it on fire. But now they seem to be suffering from a change of heart. And finally, there is the Trinamool Congress. 20 MPs of the TMC in the Lok Sabha and 4 in the Rajya Sabha have already jumped ship. But could there be more shocks in store for all of these parties?
5: Yeah, DMK will not support BJP. They may seek our support, but we will not do it. Yeah, DMK will not support BJP. They may seek our support, but we will not do it.
6: We are opposed to delimitation. That even during the last parliament session, we had opposed it. Even during the introduction itself, we had opposed it. If there is any change in the form of delimitation, then we will think of it.
7: Jadej jadej jabar ache aro, BJP chape, police chape, matha noto kora chape, kote chape, মানে কেসের চাপে, ইডির চাপে, সিবিআই চাপে, কোর্ট কেসের চাপে, তারপরে হচ্ছে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সিআইডি কেসের চাপে, সিবিআই চাপে, আইসিওসির চাপে, এসটিএফ এর চাপে, তাদের অনুরোধ করে বলবো প্লিজ 21 জুলাইয়ের আগে যার যা সিদ্ধান্ত নেয়া, যারা যারা বাঁচতে চান জীবনে লোটা কম্বল নিয়ে, তারা দয়া করে যেখানে ইচ্ছে যান বিজেপির কথা শুনে, দয়া করে আমরা যে দলটি তৈরি করেছি তাকে কলঙ্ক লিপ্ত করবেন না.
1: Hello, whoever is remaining in Trinamool Congress has got the green signal from Mamata Banerjee herself, has said, please leave before the 21st. 20th is when the next session starts of Parliament. Let's first figure out what's happening with NCP Sharad Pawar. Sameer ji, what is happening? Wo ja rahe hai, nahi ja rahe hai?
2: नहीं, मुझे लग रहा है कि पिछले जो 15 दिनों से एक्टिविटी है एनसीपी शरद पवार की है, मुझे लगता है कि लगभग उनका जाना तय है. सुप्रिया सुंदर ने जिस तरीके से प्रेस ब्रीफिंग को किया था कल रात को, जिस तरीके से जितेंद्र आह्वाड़ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ उनकी जो मुलाकात हुई है, तो मुझे लग रहा है कि संभावना लगभग तय है कि शरद पवार अब समर्थन देंगे, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि शिवसेना की पार्टी टूटी है. और मुझे लगता है कि अब बस ये बातचीत हो रही है कि केंद्र में और राज्य में कैसे होगा, क्या मर्ज कर समर्थन देंगे या पहले अलग समर्थन देंगे फिर एनडीए में शामिल होंगे, इन सब चीज़ों पर मुझे लगता है अभी डिस्कशन चल रहा होगा. लेकिन ये लगभग तय है कि अब शरद चंद पवार की पार्टी जो है वह एनडीए का हिस्सा बनने जा रही है और फिलहाल वो इस बिल का समर्थन करेंगे या वॉकआउट कर जाएंगे.
1: तो किस तरीके से जाएंगे? बिकॉज आई वॉन्ट टू फोकस ऑन timeline. Let's just see what has happened in the last 1 week. First, we had on the 14th of this month, we had a meeting take place. Can we please go back to that graphic? Let's just show the timeline to our viewers of how this series of very important meetings has taken place. 14th, you had Eknath Shinde along with 6 rebel MPs who have crossed over from UBT going and meeting Amit Shah in Delhi. The same day, in fact, the same night, Jayant Patil met Devendra Fadnavis, and in the same meeting, you also had the presence of Praful Patel and Sunil Tatkare. Soon after, we were told that Sunetra Pawar had no idea that Praful Patel and Sunil Tatkare went for this meeting. Now, 15th, we had Parth Pawar going and meeting Devendra Fadnavis. And then finally, yesterday, you had that meeting that took place between Jayant Patil and Jitendra Awad. Ab ye bataiye Sameer ji, kya dono NCP saath mein mil karke BJP ke saath aayengi ya alag alag samarthan denge?
2: Dekhiye, agar session mein bill aata hai to itne jaldi dono party ka merge hokar saath mein aana mujhe lagta hai thoda jaldi hoga. Bill is agar session mein aata hai to Sharad Pawar ya to walkout kar jayenge ya samarthan denge. Dono partiyon ka merger hona tay hai. उसी को लेकर बैठ के हो रही है। अब उसके क्या किस शर्तों पर होगा ये देखना होगा। सुप्रिया सुले मंत्री बनेगी केंद्र में, केंद्र की राजनीति कौन करेगा, फिर प्रफुल्ल पटेल का क्या होगा जो केंद्र में मंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, सुनीता पवार को शरद पवार एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, या सुनीता पवार शरद पवार सुनीता सुप्रिया सुले को कितना एक्सेप्ट करेगी, स्टेट के

0: insulting, disrupting or obstructing the singing of Vande Mataram could attract a punishment of up to 3 years of imprisonment, a fine or even both. Now, the Congress has criticized the move, arguing that only first two stanzas of Vande Mataram enjoy official recognition and insisting on the reciting entire song is inappropriate in a secular country. The BJP, however, has hit back, accusing the Congress of disrespecting a symbol of India's freedom movement. Reactions coming in on that story.
1: वंदे मातरम के दो स्टैंजास को ही मान्यता है. वंदे मातरम में आप पूजा पाठ ये वो अगर इसका ये करेंगे तो दूसरे लोग न अगर बोलेंगे ना ये यहाँ इसका संबंध, ये देश सेक्युलर है. ये इस देश के प्रधानमंत्री और जो बैठे हुए हैं ना, उन्होंने ये ध्यान में लेना चाहिए. इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आप कुछ भी नहीं कर सकते. वंदे मातरम मैं बोलता हूँ, वंदे मातरम बोलना कोई कर, मैं मुसलमान हूं तो भाई वंदे मातरम बोलता हूं, लेकिन दो स्टैंजास, और दो स्टैंजास के बारे में अगर कोई बोलेगा कि नहीं मैं बोलूंगा तो वो गलत है. लेकिन आप पूरा वंदे मातरम जो आरएसएस के शाखा के ऊपर बोला, वो जनगणमन नहीं बोलते, वो वंदे मातरम ही बोलते हैं, ध्यान में रखिए, और जानबूझ के बोलते हैं.
2: सरकार ऐसे ही काम करती रहेगी. राष्ट्रगीत राष्ट्रगान का पहले से ही सम्मान रखने के कानून है, लेकिन सरकार नौजवानों के भविष्य के सवालों पर जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए कुछ ना कुछ नया पुरानी पैकेजिंग में नया सामान आपके सामने आता रहेगा.
3: कांग्रेस हेट्स वंदे मातरम, द इको सिस्टम हेट्स वंदे मातरम. द गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट इन ऑर्डर टू गिव द सेम रिस्पेक्ट टू वंदे मातरम एज नेशनल सॉन्ग एज इज गिवन टू नेशनल फ्लैग और एज इज गिवन टू नेशनल एंथम. बट इंस्टेड ऑफ वेलकमिंग दिस इन द 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग इट, Congress has a problem with it. Congress has a problem with Vande Mataram. Nehruji divided it into two parts. When only first two stanzas were there, that time also Congress and many of its leaders refused to sing Vande Mataram. Whether it's Siddaramaiya, whether it's Madhya Pradesh Congress, whether it's Sonia Gandhi in programs, we have seen that they have a hatred towards Vande Mataram.
4: Nobody will insult Vande Mataram, but the country is very clear. India is a secular nation. For a secular nation, the secular values are important. Any song or any anthem propagating the ideas of a particular religion and facing certain gods or goddesses, so the government has to make it clear, are they serious with secularism? Do they know the meaning of secularism? If they know the meaning of secularism, they have to rethink and rethink about what they say now.
0: And well, India is taking a major leap in green mobility with its first hydrogen-powered train. Prime Minister Narendra Modi flagged off the train from Haryana's Jind Railway Station, marking a new chapter in country's clean rail journey. Now, the hydrogen train will run on the 89-kilometer route between Jind and Sonipat. The train has 10 coaches with a capacity of 2,600 passengers. And unlike conventional trains, this one generates power on board using hydrogen fuel cells, with water vapor and heat as the only byproducts. Now, as electricity is generated on board through clean hydrogen technology, the train represents the greenest form of rail propulsion, powering the future of sustainable mobility. Here's what the Prime Minister has to say.
5: Bharatiya Bijlikaran Railway ka shayad nahi ho pata. Diesel se hi rail chalti. लेकिन बीते 12 वर्षों में भारत के करीब 99% 99% रेल नेटवर्क का बिजलीकरण हो चुका है. साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है. ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर. और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है.
6: हाइड्रोजन